ते अगर काम के क्या रहेंगे पर गो न निकल सके मगर पिंजरे में पड़ पड़ाए जा गो न निकल सके मगर पिंजरे में पड़ पड़ाए जा बैठेगा चैन से अगर काम के क्या रहेंगे पर. So that means that Allah Ta'ala has given the bird are its wings. The wings of the bird, they are its means of flying and soaring high in the air.

गंदगी के दुरुस्त कर दे माल मेरा। ओ अल्लाह, वट एवर लाइफ इज गॉन इज गॉन, बट द लाइफ दैट रिमेन्स, ओ अल्लाह, लेट दैट लाइफ बी स्पेंट इन सच ए मैनर दैट आई एम ओबीडियंट टू यू एंड योर लव इज फिल्ड इन माई हार्ट एंड द लव ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Now, if I live, it must be in your love. And when I die, it must be in your love.

फकीरी से कुछ काम बन जाएगा. वेल्थ इज अ वेरी गुड थिंग इफ इट इज इन द हैंड्स ऑफ अ गुड पर्सन, बट इफ दैट वेल्थ इज टेकिंग टू सिनेमाज, डिस्कोस एंड कैसिनोज एंड ऑल अदर हराम प्लेसेस, देन इट इज नॉट गोइंग टू कम ऑफ एनी हेल्प टू द पर्सन इन द आखिरत इन द कबर एंड इवन इन दिस वर्ल्ड. दैट काइंड ऑफ वेल्थ विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन. ये दुनिया का लालच ये हिरसो हवस, ये दुनिया का लालच ये हिरसो हवस, ये दलदल है तू इसमें सन जाएगा. ये रंगी रसेली ये चेहरा हसी के मिट्टी में मल ये बद

मगर ये अहले नजर जानते हैं खुद हसी माहे कामिल नहीं है. द शाइन ऑफ द मून इज फ्रॉम द लाइट ऑफ द सन. In the same way, Rasulullah Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, if it had not been for him, you would not have had the sun, the moon, the stars, the masjids, the Kaaba Sharif, the mimbar, the minaras, nothing.

तावीज बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। Was this what the Quran Sharif was revealed for? The Quran Sharif is lamenting, it is complaining that I'm used for taweezes, I'm used for this, I'm used for that. I'm the decoration of the shelves. Juzdan harir o resham ke aur phool sitare chandi ke. Juzdan harir o resham ke aur phool sitare chandi ke. फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। But then if you look at our condition today, हे मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के। हे मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के।